नमस्ते सुप्रभात, हाय वनकम चेन्नई। आज यह कार्यक्रम बीकॉम एमएम की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 में। किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले हमें ईश्वर का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, तो आइए सुनते हैं ईश्वर के प्रति एक सुंदर भजन।

0: धन्यवाद वृंदा, आपका यह भजन सुनकर हमारा मन बहुत खुश हो गया है। आप जानते होंगे कि दुनिया में कितने सारे अजूबे हो रहे हैं जो आप जानते भी नहीं होंगे। तो हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है प्रियंका, जो आपके समक्ष रखने वाली है कुछ अमेजिंग फैक्ट्स।
1: पहला, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार हम रात को आकाश में लाखों तारे देखते हैं, उस जगह नहीं होते बल्कि कहीं और रहते हैं। हम तो उसके द्वारा छोड़ा गया कहीं लाख प्रकाश साल पहले का प्रकाश होता है। दूसरा, कुर्सी पर बैठकर अपने दाएं पैर से गोला बनाइए और साथ ही अपने दाएं हाथ से हवा में 6 लिखिए, आपके पैरों की दिशा बदल जाएगी। तीसरा, ऊंट की आंख में 3 पलके होती है जो उन्हें रेगिस्तान में उड़ने वाली रेत से बचाती है।
0: धन्यवाद प्रियंका, आपके द्वारा हम लोगों को इतनी सारी बातें जानने को मिली जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। अब आपके सामने आने वाली है अक्षता जैन, जिसकी कविता सुनकर आप जरूर प्रेरित होंगे।
2: अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र चाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, रक्षस वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
0: धन्यवाद अक्षता, आपकी ये कविता सुनकर हम लोग सब भी प्रेरित हो गए हैं। अब हमने ईश्वर को प्रणाम कर लिया, कुछ अच्छे तथ्य भी सुन लिए, एक कविता भी सुन ली, अब कुछ मजे करने की बात आती है। तो तमन्ना और श्रेया आपके सामने कुछ चुटकुले पेश करने वाली है।
3: एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन,
4: मैडम मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी?
3: आपको क्यों लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूंगी?
4: क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची थी।
0: मजा आ गया तमन्ना और श्रेया आपके चुटकुले सुनकर। क्या भगवान हमें देख रहे हैं? ये कहानी आपको सुनाएगी शिक्षा।
5: क्या भगवान हमें देख रहे हैं? हमारे घर के पास एक डेयरी वाला है। वह डेयरी वाला ऐसा है कि आधा किलो घी में अगर 200 ग्राम भी तुल जाए तो 2 ग्राम घी निकाल लेता था। एक बार मैं आधा किलो घी लेने गया, उसने मुझे 90 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने कुछ देर सोचा और पैसे लेकर निकल गया। मैंने मन ही मन सोचा, 2-2 ग्राम से तूने जितना बचाया था बच्चू, अब एक ही दिन में मैंने निकल गया। मैंने घर आकर अपनी गृहलक्ष्मी को कुछ नहीं कहा बताया और उसे दे दिया। उसने जैसे ही घी के डब्बे में पलटा, आधा घी बिकर गया। मुझे झट से बेटा चोरी का माल मोरी में वाली कहावत याद आ गई। और साहब यकीन मानिए, वो घी किचन के सिंक में जा घिरा था। इस वाक्य को कुछ महीने बीत गए थे। परसों शाम को मैं एग रोल लेने गया, उसने मुझे 70 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने मन ही मन सोचा, चलो बेटा आज फिर चेक कर लेते हैं कि वाकई भगवान हमें देखते हैं। मैंने रोल पैक करवाया और पैसे लेकर निकल लिया। आश्चर्य तब हुआ जब एक एग रोल रस्ते में ही गिर गया। घर पहुंचा, बचा हुआ एग रोल जूस निकालने के लिए अपने मनपसंद कांच का ग्लास उठाया। अरे ये क्या, ग्लास हाथ से फिसल कर टूट गया। मैंने हिसाब लगाया, करीब करीब 70 में से 60 रुपए का नुकसान हो चुका था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। और अब सुनिए, यह भगवान तो मेरे पीछे ही पड़ गए। जब कल शाम को सुभिक्षा वाले ने मुझे 30 रुपए ज्यादा दे दिए, मैंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा, क्या कहती हो, एक ट्राई और मारे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, और हमने पैसे वापस कर दिए। बाहर आकर हमारी धर्म पत्नी जी ने कहा, वैसे एक ट्राई और मारना चाहिए था। बस इतना कहने था कि उन एक ठोकर लगी और वह घिरती घिरती बची। मैं सोच में पड़ गया कि क्या वाकई भगवान हमें देख रहे हैं।
6: धन्यवाद शिक्षा, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। मुझे गाना सुनने का मन कर रहा है, आपको भी शायद करता होगा। तो चलो सुनते हैं जीना जीना सॉन्ग फ्रॉम बदलापुर, जिसे हैना, मोनिका और कीर्ति गाने वाले हैं।

अच्छी सी है ये सारी प्रेम जिससे जो मैंने करी है, अच्छी सी है ये सारी प्रेम दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया।

0: पहली जिंदगानी। ये देखो आपका गाना सुनकर मुझे भी गाने का मन कर गया। आप तीनों ने इतना अच्छा गाया कि मैं उसमें खो गई। कुछ सुलझाने का मन कर रहा है, चलो सुलझाते हैं कुछ पहेलियां ख्याति के संग।
1: काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाक नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं, बनते है पर डोर नहीं, बताओ क्या है ये? चलो आपको इसका उत्तर नहीं पता तो मैं ही आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर है चोटी।
0: आपकी पहेलियाँ सुलझाने में हमें बहुत मजा आया, धन्यवाद ख्याति। अब कार्यक्रम के अंत में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो चलो सुनिए गुलाब जामुन बनाने की विधि दिव्या के संग।
2: गुलाब जामुन सामग्री 400 ग्राम मावा, 40 ग्राम मैदा, 40 ग्राम अरारोट, एक चुटकी पीला रंग, एक चुटकी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, 1.5 किलो चीनी, कुछ मखाना पीला रंग, केसर, इलायची, पिस्ता, आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी। विधि, सबसे पहले मावे की छलनी से छानकर उसमें मैदा, अरारोट, बेकिंग पाउडर या सोडा आटे की तरह मिलाकर गूंथ ले। उस आटे में से थोड़ा या आटा बाहर निकाल कर उसमें केसर, इलायची, पीला रंग, पिस्ता वगैरह मिला लें। अब उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और मखाना भर दें। बचे हुए मिश्रण में से गुलाब जामुन के डाई के लोई लेकर पीला मिश्रण को उसमें भर दें और गोली बना लें और उससे बड़े घी में फ्राई करें। बनी चाशनी से डालकर उबाला लगाएं। गुलाब जल डालकर वरक लगाएं। चाशनी बनाने की विधि, चीनी का आधा पानी डालकर तेज ओज पर बैठे देंगे और चीनी गलने तक पकाएं। इस चाशनी को चपचपी चाशनी बोलते हैं। नोट, मावा अगर किसी कारण से खराब आ जाता है तो 40 ग्राम अरारोट की जगह 100 ग्राम अरारोट का प्रयोग करें। उस समय इसमें पैकिंग पाउडर नहीं डालें। चाशनी 4 से 6 घंटे ठंडा होने दें। अगर जल्दी हो तो एक उबाला ज्यादा लगाएं।
0: कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसी तरह हमने भी आपको मनोरंजित करने की यह कोशिश की है। आशा है कि BCOM MM हिंदी डिपार्टमेंट से किया गया यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 पर।